फूल कुछ चाहिए हुजूर हमें, जुल्फ रुख से हटा के बात करो, रात को दिन बन...

रात को दिन बना के बात करो, मैं कदे की चराग मत दम है, जरा आंखें उठा के बात करो।